0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी।

0: गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रही हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
4: बन के टिकली में टिकली।
3: थोड़ा तेज बोलिया करो, आवाज नहीं आती आपकी।
4: बन के टिकली में टिकली,
3: उसे मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी

0: पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026 हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा हम क्या देते हैं AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स
1: हेलो

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी, नाम क्या है आपका?
0: निशा शर्मा गंगापति से।
1: मैम कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: शादी वाला चोला।
1: कौन सा मैम?
0: शादी वाला जोड़ा।
1: शादी वाला जोड़ा।
0: हाँ मैम।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
2: जैसे थी एक राव की काशी, तुम्हें जंग पे जाते तिलक मैंने तुम्हारी जीत के लिए लगाया था। न जानती थी कि इस तिलक को तुम किसी और का सिंदूर बना दोगे। गुनाह है इश्क का फैसला है सूरते पाजेब में, आह कैद भी रहे और आबाद भी।

0: हेलो मैडम, नमस्कार जी।
1: तो नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लू के रास्ते।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या डरना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आरबी गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दिल आगे घर चंडीगढ़ में।
1: वो किस गाने सुना रहे हैं आपको? कन्वर्ट करिए गाना। बना दे घर, दिला दे घर।
2: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: कर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना बढ़िया लाए।
0: हाँ जी बताइए।
1: गीत गाता चल।
0: कौन सा सर?
1: गीत गाता चल।
0: गीत गाता चल
1: जी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना वो है आने से उसका।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:30 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: अरे आज कान पुराने हो गए।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: फूल बरसाओ मेरा महल।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
1: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

तड़का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मेगा शर्मा जी की। मेगा शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

काशी जैसी थी एक राव की काशी। तुम्हें जंग पे जाते तिलक मैंने तुम्हारी जीत के लिए लगाया था। न जानती थी कि इस तिलक को तुम किसी और का सिंदूर बना दोगे। गुनाह है इश्क का फैसला है सूरते पाजेब में। आह कहत भी रहे और आबाद भी।

0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सराय माधोपुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: संजय राम बोल रहा हूँ।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रामनगर के आते हैं।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: कमरे में खिलाया फूल फूल।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:56 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्धमान में टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें।

0: एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS89.6।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS89.6।
3: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
4: मेरा नाम सोहन सैफी।
3: सर कहाँ से बात कर रहे हो?
4: कौन सा गाना?

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ
1: हेलो,
0: से बात कर रहे हो? हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लोगो रे एक सुना करियो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: के घड़े। नमस्कार, मैं विजय पांडे थाना पचपड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे कॉल को तस्लीम किया।
1: थैंक यू सर। सर नाम क्या है आपका?
0: विजय कुमार पांडे
1: जी। सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है राजकुमार, सर लता मंगेशकर की आवाज में।
1: हाँ जी, कौन सा?
0: आजा आई बहार दिल है बेकरार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: ये सुबेदार ओपी शर्मा, विद्या रतन शर्मा, केशव प्रसाद शर्मा के लिए एक गीत समर्पित रहेगा।
1: सुना रहे हैं सुबेदार, नहीं सर, ये गाना रिटर्न में को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मैडम मैं सलीमपुर से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज कौन से चांद पे जावे की तू कदे भूल जा रहा।
1: सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: ठीक है

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: पलक।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मंद मंद बोला किया।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
3: रफीक खान,
1: गंगापुर।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: लोगों मस्जिद के पीछे से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: बाबू खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: साजन।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आप ही, फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो हेलो, हाँ जी, नाम क्या है सर आपका? कौन से गाना सुनना चाहोगी
1: आप? सुना दो, ये है प्रेम प्रतिज्ञा का।

0: पतली पतली कमर
1: रेस। हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका? बन्ना जी, कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: पतली पतली कमर रेस की छोटे से प्यार भरे।
2: पतली पतली

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है?
1: मोनिका।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहिए?

0: मानु प्रताप सिंह
1: कहाँ से बात कर रहे हो मानु जी?
0: करौली से चौना से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: रात गिर रही थी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपको।

0: हेलो
1: हेलो हाँ जी नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: धड़कन से सुनवा देंगे तुम दिल की धड़कन।

0: प्रोग्राम चल रहे।
1: जिला बठिंडा तो पंजाब तो जीजी तो मट्टू बोल रहा भाई।
2: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: गाना भाई कल अपने मदर डे लग गया भाई, थानू मैं मदर डे दिया पहले तो लख लख मुबारक बधाइया दिना भाई मट्टू फैमिली माउट वालों भाई।
2: तो भी आपके परिवार को
1: अपने बड़े सर मीना जी नू भी सत श्री अकाल बुला दी मेरी।
2: ओके सर, बोल दूंगी।
1: ठीक है जी। ते बेटा मैनू कुलदीप पंजाबी सॉन्ग सुना दो बेटा आज।
2: कौन सा वाला सर बताओ?
1: सिंगर का नाम है जी कुलदीप मानक साहब जी। अच्छा। उसके बोल गीत के बोल बताऊं बेटा?
2: हाँ सर।
1: माँ होंदी ए माँ ओ दुनिया वाले ओ, ए गीत है भाई।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चंगा भाई, सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रही हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: जीने के हैं चार दिन।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: लतीफ अहमद रीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं कश्मीर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है आंखी, फिल्म का
0: आंखी मूवी का।
1: हाँ, लाल दुपट्टी वाले तेरा नाम तो पता।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। प्रिय गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: पूर्ति गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मिर्जापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: दिल संभल जा जरा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: हेलो मैम।
1: हाँ जी।
2: हाँ जी, मैं नवीन स्कूल के सामने से बोल रहा हूँ, पप्पू सैनी।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: हाँ जी, वो है पिक्चर का नाम पाले का, फिल्म गाने से बोल है सलमा को मिल गया बलमा।
1: सलमा को मिल गया बलमा।
2: सलमा, हमको छोड़ कर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गौरव।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मणिजापुर अम्बेडकर धर्मशाला।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सामान।
1: क्या सुना रहे हैं?

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: रतन लाल बोल रहा हूँ, पुलिस चौक।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेरे देश की धरती सोन उगले हुए मोती।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं आपको किसी से
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026 हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा हम क्या देते हैं AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था प्रशिक्षित अध्यापक अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज कंप्यूटर लैब साइंस लैब आदि सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ संगीत नृत्य चित्रकला खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण स्कूल बस वाहन की व्यवस्था पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है वर्तमान में एडमिशन ओपन है स्कूल का पता
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर क्षेत्र गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है

0: नंबर वन इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी 10th बोर्ड रिजल्ट 2024 टॉपर पारस खत्री विद 99% 12 स्टूडेंट्स अबव 98% 31 स्टूडेंट्स अबव 97% 68 स्टूडेंट्स अबव 95% 180 स्टूडेंट्स अबव 90% वी डोंट प्रॉमिस बट प्रूव डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी।
1: दोस्तों अभी आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम कुछ थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी बातें के साथ साथ आपको नए गानों से रूबरू करवाते हैं। चलिए कार्यक्रम का करते हैं आगाज और पहला गाना एक भजन के रूप में सुनाते हैं और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत।

0: साथ है।
1: तो इस वक्त आप ट्यून कर रहे थे 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका रेडियो दोस्त रेसे मिला। दोस्तों आज बात करते हैं हेलमेट सुरक्षा कवच के बारे में। दोस्तों हमें लापरवाही न बरत कर हमें जब भी मोटरसाइकिल या दुपहिया वाहन चलाएं, हम हेलमेट का प्रयोग बहुत जरूरी समझ के करें, क्योंकि ये एक हेलमेट को वजन माप कर नहीं चलना, हमारा जीवन का सुरक्षा कवच मानकर हमें धारण करना है। दोस्तों हेलमेट से बहुत सारे फायदे हैं हमको। पहला फायदा, एक तो कभी भी जब हमें दुर्घटना से ग्रसित हो जाएं तो हमारा पूर्ण रूप से बचाव रखेगा। दूसरा फायदा, हम तेज धूप में, तेज हवाओं में चलें या तेज सर्दी में, किसी भी प्रकार का मौसम रहे तो हमारी आंखों को, कान को, मुंह को इत्यादि को बचाए रखेगा। दोस्तों साथ ही सुरक्षा करता है कीट पतंगों से, जो हमारी आंखों को सीधा आंखों पे आते हैं उनसे, और साथ ही गर्म हवाओं के थपेड़ों से हमारे होंठ फटने, चेहरा फटने जैसी इत्यादि समस्याओं का एक ही समाधान है हेलमेट। दोस्तों बातचीत तो चलती रहेगी, मैं सुनाता हूँ फिर आपको लेकर चलता हूँ आपके मनोरंजन की दुनिया।

दिन तुझको ही दूंगी पहले सॉरी बोल। बड़ा आनंददायक गाना था दोस्तों। इसी गाने के साथ हम थोड़ी सी बातचीत भी कर लेते हैं और आज की बातचीत का विषय रहेगा सीट बेल्ट लगाने के फायदे।

खुश तो सभी प्रकार के वाहनों में किसी ना किसी प्रकार से कोई खास बात होती है। उन्हीं में से हम एक विषय को लेकर आए हैं, सीट बेल्ट लगाने के फायदे। तो करते हैं सीट बेल्ट लगाने के फायदे से संबंधित थोड़ी सी बातचीत। दोस्तों यूँ तो सीट बेल्ट लगाने के कई फायदे होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुर्घटना के समय होने वाली चोटों से बचाव। और सीट बेल्ट आपको अपनी सीट पर जकड़े रखता है, जिससे आप कार के बाहर फेंके जाने या गंभीर चोट लगने से बचे जा सकते हैं। सीट बेल्ट पहनने से मृत्यु की संभावना को 70% तक कम किया जा सकता है। दुर्घटना से चोटों में बचाव सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।

दोस्तों साथ ही आपकी मृत्यु की संभावना कम हो जाती है और प्राथमिक जो संयम प्रणाली होती है सीट बेल्ट को प्राथमिक संयम प्रणाली मतलब PRS भी माना जाता है। सुरक्षा का एहसास होता है, आप लंबे समय तक सफर करेंगे, सीट बेल्ट लगाने से आपको सुरक्षा का एहसास होगा, गाड़ी चलाते समय अधिक आत्मविश्वास भी महत्वपूर्ण रहता है। सभी जानते हैं सीट बेल्ट लगाने से कानून का भी हम पालन करते हैं, ज़्यादातर देशों में सीट बेल्ट पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है और ज़रूरी है, इस्तेमाल से आसान होता है और गंभीर चोटों से बचते हैं और बाहर फेंके जाने से बाहर जो गाड़ी से निकल जाते हैं उसको 90% तक हम रोक सकते हैं, मृत्यु का खतरा टल जाता है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी भी चाहिए और सीट बेल्ट आवश्यक रूप से लगाएं और आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित ड्राइव करें। हैप्पी जर्नी।

0: का सरताज है।
1: दोस्तों 1:16 का समय हो चुका है, इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं नए तराने कार्यक्रम। दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे 89.6 रेडियो बीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मिला। और दोस्तों चलिए सुनते हैं हम नए गाने को।

नंबर वन इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी 10th बोर्ड रिजल्ट 2024 टॉपर पारस खत्री विद 99% 12 स्टूडेंट्स अबव 98% 31 स्टूडेंट्स अबव 97% 68 स्टूडेंट्स अबव 95% 180 स्टूडेंट्स अबव 90% वी डोंट प्रॉमिस बट प्रूफ डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी।

दोस्त इस वक्त आप टून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों 1:20 का समय हो चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं नए तरह कार्यक्रम।

बातचीत करते हैं थोड़े से एक विषय पर, थोड़ा विषय मतलब हल्का छोटी बातचीत करेंगे क्योंकि आपका मनोरंजन का समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आज नाश्ता, सुबह का नाश्ता यानी सभी करते हैं, कोई नई बात नहीं है। सुबह का नाश्ता करने से सेहत बहुत फायदेमंद होती है और शरीर को ऊर्जा देता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और वजन को नियंत्रण रखने में भी मदद करता है। दोस्तों पार्टी तो चलती रहेगी, पहले हम नाश्ते पर ध्यान रखेंगे। नाश्ता क्यों जरूरी है? नाश्ता करने का ध्यान केंद्रित रखना जरूरी भी है क्योंकि क्षमता में सुधार होना आलस से भी दूर होता है। नाश्ते के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाश्ता ही होता है और नाश्ता करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है जिससे हम दिन भर मेहनत या कोई सा भी काम कर सकते हैं। इसकी पर्याप्त शक्ति हमें नाश्ते से या खाने से ही मिलती है।

दोस्तों पाचन सुधार प्रक्रिया के साथ साथ वजन नियंत्रण रखना और थकान कम करना बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है और पोषक तत्वों की शरीर में भरपूर मात्रा में पूर्ति हो जाती है। जैसे नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, ओरल जैसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। करते हैं हम नए गाने के साथ और सुनते हैं आपके मनोरंजन के लिए गाना।

0: दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं नए तराने कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आप थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम पर्याप्त नींद लेने के फायदे और नुकसान के बारे में।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: दोस्तों देखो, पर्याप्त नींद लेने के कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, जैसे मजबूती प्रतिरक्षा प्रणाली, संतुलित वजन, स्वस्थ दिल और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। हमें याददाश्त और ध्यान केंद्रित की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। डिप्रेशन, हृदय रोग के खतरों को कम करता है। पर्याप्त नींद के मुख्य फायदे हैं, एक तो शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत जरूर मिलती है, और वजन संतुलित रहता है। वजन संतुलित रहेगा तो खतरा शरीर में बीमारियों का कम रहेगा। दिल स्वस्थ, हृदय रोगों से हमें मुक्त मिल जाएगी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: दोस्तों साथ ही हम इस चीज़ को जानते हैं कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा, और साथ साथ मस्तिष्क का जो प्रदर्शन है, जो काम करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, वो तीव्र हो जाएगी। तनाव कम होगा और वजन संतुलित रहेगा। एक वयस्क इंसान को 7 से 9 घंटे की नींद आवश्यक होती है। दोस्तों नींद में कमी से स्वास्थ्य पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि आपको नींद आने में परेशानी हो रही है तो आप जरूर अपने नज़दीकी आपके पारिवारिक डॉक्टर से सलाह लें।

दोस्तों बातचीत तो बहुत सारी कर ली और थोड़ा सा आपके मनोरंजन की ओर रुक करते हैं और सुनाता हूँ मैं आपको मोरनी भागा में बोली आधी रात को, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो डीएस पर।

दोस्तों बातचीत करते हैं हम गर्मी में कैसे कपड़े पहने और जिनसे हमें फायदा मिल सकता है। गर्मी में पहनने के लिए ढीले हल्के और सांस लेने योग्य कपड़े सबसे अच्छे रहते हैं। कॉटन, लिनन और खादी जैसे प्राकृतिक फाइबर गर्मियों के लिए बेहतर विकल्प है। ये कपड़े पसीने को सोखते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। और दोस्तों साथ साथ आप लोग सभी जानते हैं कि इस गर्मी के मौसम में जो बेहतर तरीके से हमारे पसीनों को सोख सके, सिंथेटिक कपड़े जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन गर्मी में पहनने वाले उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि वह हवा को अंदर जाने से रोक देते हैं और इस वक्त हमें शरीर को बहुत सारी हवा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों चलिए और चलते हैं, हम एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन गाना सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का। दोस्तों बता दें आपको, आप इस वक्त ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

दोस्तों 1:45 का समय हो चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त से मिला जाना नहीं छोड़ के कार्यक्रम को। ओए

0: दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है डीएस साइंस अकेडमी। डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है वो आसान, दाखिला दिला दीजिए डीएस साइंस अकेडमी गंगापुर सिटी। दोस्तों हमारे बच्चों का सुनहरे भविष्य एकमात्र एक छत के नीचे डीएस साइंस अकेडमी पर। साथी दीजिए अपने ननिहाल छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट बच्चों का एडमिशन बचपन पब्लिक स्कूल। आरंभ हो चुका है गंगापुर सिटी में कक्षा 5 से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी, साथ साथ आपके बच्चों की पढ़ाई। दोस्तों कुछ खास है डीएस साइंस अकेडमी में, इसलिए एक राजस्थान में नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान एक नाम।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: चलिए दोस्तों आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। और दोस्तों सुनते हैं हम कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

दोस्तों वक्त हो चुका है 1:48 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: कि यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सांस सुनी थी कार्यक्रम नहीं तराने। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली विसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher.

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:47 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को जल्द ही दर्ज

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

वक्त हो चुका है 4:15 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पल। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाई।
1: हेलो
2: जी मैम, गुड इवनिंग।
1: नमस्ते मैम, गुड इवनिंग
2: जी मैम। नाम क्या है आपका?
1: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं मैम, मोनिका
2: जी। मैम कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आएगी आएगी आएगी हमारी याद किसी को आएगी।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: भमराज मीना बोल रहे हैं जी, कान्हा जी स्पेशल टिकट की दुकान से, स्टेशन रोड गंगापुर सिटी।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जब तक रहे तन में जिया, समाधि मूवी का गाना है।
0: जब तक रहे तन में जिया।
1: हाँ
0: ओके, तो सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना।
1: ओके थैंक यू।
0: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते। नाम क्या है आपका?
0: गुड इवनिंग सर। मैडम
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम सोहेल सेठी है।
1: जी कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? जी राजू कॉलोनी गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: जी मूवी का नाम है मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, गाने बोले लड़की देखी सिटी मोटर वजह आपसे ताली।
1: ओके तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। हेलो

0: चौधरी बोल रहा हूँ आगे
1: सर। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बात तो जी चल रही है
1: आपकी, चल रही है, हम तो सारे दिन ही सुनते हैं। इस टाइम आपके पसंद के ही चलेंगे फरमाइश की टाइम तक। हाँ जी बताइए।
0: गाने के बोल रहे दीदी टिंकू जिया।
1: टिंकू जिया पल पल ना माने टिंकू जिया है ना सर? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रिपीट में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मोनिका।
2: मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
3: रेलवे कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
3: आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। मोनिका

0: शारदा प्रसाद प्रजापति
1: जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मथुरा से, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र
1: जी। सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अकेले हम अकेले तुम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपके
0: कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ गीत है।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीडुक्सा, तहसील मित्रपुरा, जिला सवाई माधोपुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: फिल्म का नाम है संतोष और गाने की बोल है यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: वेलकम सर। हेलो।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल
1: कोमल जी, कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दूल्हे की साली और दुपट्टा वाली।
1: कौन सा?

0: नहीं सर, पूरा
1: ओके सर। और फरमाइश पे बताइए सर।
0: हम उनसे मोहब्बत करके
1: ओके
0: रात
1: सुना रहे हैं
0: रोते हैं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हवा में काले रे काले बाल उड़े।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू।
1: यू वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते। नाम क्या है आपका?
0: मुझे खाना सुनना है
1: जी। नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम मोहित लोधवाल है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: सिंगापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कौन सा गाना सुनना है आपका?
2: लाल चुनरिया वाली पे दिलाया।
0: लाल चुनरिया वाली पे दिलाया रे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आरबी गुजर गंगापुर से बोल रहे, और गाना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: किशोर।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चांद रात में गोरी चला दी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: वाह वाह वाह, बुरे याददाश्त के मामले में आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि कुछ दिन कुछ हफ्तों पुरानी बात है जब आप रो रहे थे कि हम वर्ल्ड कप हार गए और अभी देखो कैसे एंजॉय कर रहे हो। चलो गाने एंजॉय करो। गाना कौन सा एंजॉय किया वैसे आपने? पछताओगे गाना सुना आपने अरिजीत सिंह की आवाज में। गाने को लिखा किसने था? जानी ने, और कंपोजिशन बी प्राक ने किया। और अब एंजॉय करो चार गाने बैक टू बैक सिर्फ आपके लिए। कहां? 89.6 रेडियो DSP।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है ओ बेदर्दिया. लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन प्रीतम ने, और मुझे भी गाना गाने का मन कर रहा है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. अगर आज आपका बर्थडे तो बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू. लेकिन क्या आपको पता है कि बर्थडे केक का कॉन्सेप्ट कहाँ क्रिएट किया गया था? किसी जर्मनी के बंदे ने पहली बार आज से 200 साल पहले बर्थडे केक काटा था. और दुनिया में हर रोज 15 मिलियन लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यानी 1.5 करोड़ लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट करें. उनमें से अगर आप हो तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. फिलहाल बैक टू बैक 4 गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP.
0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: ऊर्जा काले कावा गाना सुना आपने उदित नारायण की आवाज में, अलका याग्निक जी की आवाज में, लिरिक्स लिखा अनन बख्शी ने और कंपोजिशन उत्तम सिंह के द्वारा, लेकिन इस गाने को रिक्रिएट और रीअरेंज किया मिथुन ने। सुबह के 9 बज के ऊपर हो चुके हैं भैया और अभी तक दांत खिटखिटा रहे, ठिठुर रहे हो ठंड में। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी है तो भैया क्या कर रहे हो, ठंड आ चुका है, विंटर्स आ चुके, दौड़ने जाओ, जिम ज्वाइन करो, बैडमिंटन खेलो और फिलहाल गाने सुनो। बैक टू बैक 4 गाने आपके लिए रेडियो DS 89.6 पे।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन. शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग. 89.6 पे रेडियो DS.

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: बस बजना चाहिए गाना।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: करते हैं
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: करते हैं
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ कुछ टिप्स आपको बताती हूँ जो आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगी। भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए, धूम्रपान से थोड़ा बचे, नहाए ना, चाय कॉफी ना पिए और एक्सरसाइज ना करें। स्वस्थ रहने की ये टिप्स आपके और 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा।

89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। अक्सर आपको लोग ये तो बताते हैं ना कि ये करो वो करो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। गुस्सा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उससे लिवर कमजोर होता है। दुखी नहीं होना है, क्योंकि उससे लंग्स कमजोर होते हैं। चिंता तो बिल्कुल नहीं करना।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।

89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। हम सभी बड़ा लंबा जीना चाहते हैं, तो अगर आप भी 100 साल तक जीना चाहते हैं ना, तो मैं आपको कुछ 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बता दी। सबसे पहली कि रोजाना 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। दूसरी जो अक्सर हम नहीं करते हैं, स्क्रीन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज, विटामिन डी युक्त पदार्थों का हमें सेवन करना है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ये तो आपने सुना ही होगा। मैं हूँ आरजे खुशी, लेकिन इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आजकल लोग अपनी जो बड़ी खुशियां हैं उनको मनाने से भी कतराते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत में हर दिन बहुत खास होता है, हर दिन कोई ना कोई खास तिथि होती है, और अगर हम क्लोजली देखें तो कहीं ना कहीं हर दिन एक त्योहार होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए माना हर दिन तो हम लोग नहीं मना सकते, लेकिन महीने में एक या दो दिन तो ऐसे जरूर आते हैं जब हम सब लोग मिलकर साथ बैठकर किसी एक त्योहार को मना सकते हैं। इन छोटी छोटी खुशियों को अगर हम मनाना शुरू करेंगे ना, तो हम देखेंगे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ऐड होगी। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी लाइफ में बहाना होना चाहिए लोगों को खिलाने का, उन्हें अपने घर बुलाने का और बहुत सारे मजे करने का। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बातें ना हम लोगों ने कोरोना काल में सीखी है। मैं हूँ आरजे खुशी। कोई लोग बोलने लगे कि हल्दी का दूध पियो, तो कुछ लोगों ने कहा कि लगातार दवाई लेते रहो, कुछ लोगों ने कहा लगातार आप च्यवनप्राश खाते रहो, तो कुछ लोग बोले कि आंवला रोज खाते रहो। लेकिन आप जानते हो कि एकदम से कुछ खा लेने से आपकी बॉडी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डेली कुछ अच्छा खाते रहोगे ना, तब बात है। अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि इतनी जो कलरफुल सब्जियां आपको दिखती है ना, इतने रंग बिरंगे फ्रूट्स आपको दिखते हैं, उनको खरीद कर खाना शुरू कर दीजिए। जितने रंग की सब्जियां आप खरीदेंगे, उतना प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे। और अगर आप रेगुलर वे में ये करेंगे तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि आपको बाहर से किसी चीज को कंज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो किसी भी सीजन में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हमारा दिमाग ना कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देता है अगर हम जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं हूँ आरजे खुशी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत वीडियो देखने की आदत उसको पड़ जाती है और लगातार गलत वीडियो देखता रहता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड की वीडियो देखने शुरू करते हैं और एक के बाद एक वही वीडियो देखते रहेंगे, वही वीडियो उनके टाइमलाइन में आ जाएंगे। तो जो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपने फोन में देख रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे दिमाग पे। एक तो अगर हमने एक ही तरह का कंटेंट देखना शुरू कर दिया तो वो ही हमारी प्रोफाइल पे बार बार आएगा। इसलिए अगर कोई फालतू का कंटेंट आपकी प्रोफाइल में आए ना, उसे देखिए मत, उसे स्किप कर दीजिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी हमें उस यंत्र से मिल पाए जिसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन। सबसे ज्यादा हम लोग इसी के साथ वक्त बिताते हैं ना, तो क्यों ना इसे ही पॉजिटिविटी में बदल दिया जाए। सोच कर देखिए। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: सुप्रभात, नए दिन में आपका स्वागत है. 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ. चलिए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ. एक बड़े शहर में एक युवा व्यक्ति राहुल आया था. वो छोटे से परिवार से था और उसका सपना था कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेगा. उसकी माता पिता ने उसे हमेशा सच्ची मेहनत और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की सीख दी थी. राहुल ने कुछ वर्षों तक अलग अलग व्यवसायों में काम किया और अनुभव जुटाया. उसकी मेहनत और निष्ठा से उसका व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ने लगा. लेकिन जैसा कि जीवन में आम तौर पर होता है, उसने भी समस्याओं का सामना किया. आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए 89.6 DSFM. मैं तनीषा आपके साथ.
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग. 89.6 पे रेडियो DS.

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: मैं आपको सुना रही थी राहुल की कहानी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल समस्याओं का सामना कर ही रहा था कि एक दिन उसका सब कुछ खो दिया, उसका व्यवसाय, पैसे, संपत्ति, सब कुछ। यह हादसा उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन राहुल हार नहीं माना। उसने फिर से व्यापार शुरू किया, इस बार और भी मेहनत और आग्रह के साथ। राहुल ने नए नए रास्तों की खोज की और नए नए आइडियाज का परीक्षण किया। बिना हार माने उसने अपने सपनों को वापस से पूरा करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत और निरंतरता ने उसे फिर से सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। लेकिन फिर एक मुसीबत उसके सामने आई। आगे क्या होता है यह आपको मैं बताऊंगी यहीं पे 89.6 DSFM पे। मैं तनीषा आपके साथ।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: एक दिन उसका व्यवसाय फिर से उसके पूरी दुनिया में मान बन गया। वह अब अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और संकल्प ने उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी मेहनत, संघर्ष और संकल्प हमें उन समय से गुजरने में मदद करती है। हार न मानने की भावना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। फिर मिलूंगी आपसे इन्हीं बातों के साथ 89.6 DSFM पे, मैं तनीषा।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।